0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: तू सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी है।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

बलराज, यू वोंट बिलीव मैनू राती की सुपना आया। पहले तुसी आओ, मैं फिर दसूंगी। तुसी जल्दी आओ, मैं बहुत सारी गल्ला करनी है।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।
1: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320 CM

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320 yeah.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: महल वालियां दा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advance Boulevard, unit number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist.
2: HK Movers.
5: HK Movers.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
3: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर।
2: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
4: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है।
5: ओ यार काव्या, होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
6: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
8: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर, आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
9: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
10: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साउथ को अपना साथी बनाओ।
11: लव

0: नॉर्थ साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ।
2: अगर थोड़े बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है, तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहते हो, तो इको एक नाम नु याद रखना। पिछले 25 सालों तो कम्युनिटी दे विच मन्या परमन्या नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह 416-451-4565। 25 साल दी दिन देने नाल वारंटी। 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा ली पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा।
3: वाह भाभी जी, मुबारक, तुहाडा घर ते बहुत शानदार है। कारपेट्स, वुडन, सब कमाल दे ने, लगदा है काफी खर्चा कीता है।
4: ए कमाल है जी, जीटीए फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा सामान। वड्डे शोरूम ते आओ, हार्डवुड कारपेट, लैमिनेट, टाइल्स दी खूबसूरत ते लार्ज वैरायटी पाओ। कॉल करो नव बरार नु 905-605-4005 905-605-6605।
5: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा।
6: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा।
7: मेरी हाथ मिनोनो चूड़िया है।
8: आज ते जान नालो ज्यादा तू सोनी लग रही है।
5: तुसी भी आओ, अपनी खूबसूरती नु सजाओ स्कारप्रो टेक्सटाइल नाल।
8: पाओ सूट्स, साड़ीज, लहंगास, ज्वेलरी अते फैशन एक्सेसरीज,
5: ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मच मच मोर।
8: आज ही पहुँचो
5: स्कारप्रो टेक्सटाइल 2659 इसलिंगटन एवेन्यू एट एलबीएन। कॉल 416-742-0010 416-742-0010।
9: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
10: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto।

0: कैनेडियन हैं जो कि दर्जनों ही अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सिटीजनशिप खो देंगे ड्यू टू डी नेचुरलाइजेशन एफर्ट, इसकी वजह से उनकी सिटीजनशिप भी जाएगी। अमेरिकन ओवर क्रिमिनल एलिगेशन जिनके ऊपर है, वॉलेंट्री मैन स्लॉटर हो गया, सेक्शुअल अब्यूज ऑफ माइनर हो गया, उसके तहत काफी लोगों की सिटीजनशिप अमेरिका जो है इस वक्त खींच रहा है। प्रेस रिलीज में सोमवार को यूएस अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने बताया कि मूव जो है लार्जेस्ट डी नेचुरलाइजेशन एफर्ट है मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि क्रिमिनल्स को बाहर निकाला जाए। और इसके साथ ही साथ एक औरत है जिसको काफी सिवियर इंजरीज आई है, वॉन में उसकी मौत हो गई थी ड्यूरिंग हिट एंड रन ऑन संडे, यॉर्क रीजनल पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। ये था खबरों का खास बुलेटिन आप सबकी खिदमत में, देख रहे हैं आप सुन रहे हैं आप रेडियो प्रोग्राम रंगला पंजाब में, आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजू सिक्का।
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। जीना या मरना इंसान दे हथ नहीं, परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दिया धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नू विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबिक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम, जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दी रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188 लोटस फ्यूनरल होम।
2: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हन साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डिवेलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਇਰ ਐਟ ਨੈਨੂਆ ਐਂਡ ਯੂਐਫਏ ਲੋਇਰਸ।
4: ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ।
3: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-793-6889।